अच्छा, वही इट्स गोना बी ए कैल्विन फिनिशन्स बॉल. आई टेक इट डाउन द रोड toward Pat Harless's old residence. That's going to be off the road away for now. It's going to be back tonight, clear.